0: गिलास तुम कफाफी।
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंती कनाम मता का इसके आराम पिसले कम से दिखूं कुछ बला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे इतनी म्याना करे अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन के जान मंती कनाम मता का इसके आराम है ये जन के रीस के जान वा ना जब फिक्री जान मु उतनी मान लेकिन फिर लेन देसाना को दे मना रखा ना सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मना रखा ना तेंदे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना का फिर ना सु पता ना कौन सा ये ले फिर ना का फिर ना जाने मार सु था वो ना था फिर ले फिर ना जो फिर का नहीं चाहिए ना बुला चुना ये ना जाने
3: ये सु था ले वैसे मुझे तो मत Saya nak tarik suit tu jadi semua fikirlah tentang suit. Suit sahaja jadi suit. Suit tu saya nak fikirlah timnya nak cari sahaja tu nanti dia walas sahaja jam sesuatu cuma walas sahaja tu nanti saya. Saya mampu ajaran naja yang zaman tu ni mampu tak naja rakyat sih. Tapi tanjat nanti tunggu apa ni? Saya nak
4: fikirlah suit tu. Le ulah nanti tungsa. Apa ni? Tiko nak kene ciri ara tempir nane tiko. Arakan panrinwe tei teta Madagascar te sutun mitsa san ye fankerezana wasere te mafinasha ne tonareo fa tena hoe makafi tokoa antilosy mamtsikity izay tena hoe tsy manantsaly ty izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: अलसने नम पास के साने अंधवान या ते अंदे इसे ब्लॉक सही इसे ट्रोंग यू सेज़न ते ना प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसे कुछ ते बना बोल वापिस सही ना लोग ना सफ़ा ते सेज़न सफ़ी ते नहीं हुआ ना चुन फ़ियालम बोल नहीं जाने वचानों में नहीं मिसे सकेला ना करूँ आ ते फ़ियालम बोल नहीं वचानों में ना वो इसे ते सही मेने किस ते मलो
2: Usalama tahu tu, sesalama sesatu.
3: Fafa kayaan nuwa afaka muncik, panut cik, mila fi bepanan tan cik, hok cik ibepak. Ira fi derana fon dia naya fanan telia naya ratusan dia rendiran sotul sorem fa ira te am nira. To cucu ta fa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esat ita fa lacakalal cik.
4: Program kita musan dia nanti lepas. Semba antikian rasa, si baru tenambang rumetosan bahanan bahan tukasan. Ini memas nampat, dan macam macam kemud, mana tu telefon isanan. Ini cuma sani arah tu, jadi macam rumbe full mood di semba sekelamin bah, ini sahaja top ni tu warna tulis tukasan. Soalnya tentang fit Chelsea su tumbuh atau tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musim tu, ni mifafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana manch.
0: Shout out tumbuh kula, shout out tumbuh faf.